0: पे बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर पे हूँ या मैं मोबाइल में हूँ या मैं किसी एक्टिविटीज में, तो फिर मेरे लिए दुश्वारी है। तो बाकी देखना क्या है कि ये इसके वजह क्या है और किन आसाब पे दबाव है जिसकी वजह से इसके सर में दर्द है, उसकी नोयत, उसकी शिद्दत, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके गर्दन के पट्ठों में खिंचाव है,
1: ठीक है,
0: इसकी वजह से है। अब हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हो,
1: ऐसी बात है।
0: अब चीज ये है कि ये सारी चीजों की जब तक आप मुआलिज से मिलेंगे नहीं उस टाइम तक इसकी तशखीस नहीं की जाती,
1: ठीक है।
0: बाकी अब वजूहात में आ जाए तो वो शॉर्टली जो आम कॉमन हैं वजूहात, वो तो वही है कि आप रात को लेट सोते हैं,
1: ठीक है, ऐसी बात है।
0: और ये भी है कि आप अगर 10 बजे के बाद सोते हैं तो फिर आपका जिस्म हीट पकड़ेगा, गर्म,
1: ऐसी बात है।
0: एक टाइम है आप एक उसकी एक टाइम तक आप सो सकते हैं, लेकिन जब आप लेट करते हैं तो फिर आपके लिए वो मसला बनेगा, नींद पूरी नहीं होगी तब भी, और बहुत ज्यादा जहनी दबाव ले लेंगे तब भी आपके सर में दर्द रहेगा। आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देर तक बैठते हैं तब भी, आप आंखों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं स्क्रीन पे यानी के जमाए रखते हैं,
1: ऐसी बात
0: तो
1: है,
0: फिर भी उस पे असर आएगा आपके दिमाग पे। फिर पानी कम पियेंगे तब भी आपके सिर में दर्द हो सकता है,
1: ठीक है।
0: खाना आप टाइम से नहीं लेंगे, आगे पीछे करेंगे वक्त को, तब भी मसला बन सकता है। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी आप पी रहे हैं,
1: ऐसी बात है,
0: तब भी मसला बनेगा, और आप उसे अचानक छोड़ेंगे तो भी मसला।
1: अच्छा हकीम सर, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सर में दर्द हुआ तो हम उसके पीछे एज अ मेडिसन चाय इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा,
0: बिल्कुल।
1: तो ये कोई नुकसान दे सकता है, यानी कि अगर डेली आपके सर में दर्द होता है, अब ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका रेगुलर रात को दर्द हो जाता है सेम टाइम में, तो वो चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके कोई नुकसानात हैं ये बताइए।
0: आप उसे अगर कंटिन्यू ही रखते हैं और रोजाना उसका अपने एक रूटीन बना ली है,
1: ठीक है,
0: तो उस वो तो मर्ज अपनी जगह पे कायम है। आप वक्ती तौर पे तो रिलैक्स हो जाते हैं चाय पी के,
1: ऐसी बात है,
0: कुछ ऐसे अज्जा हैं जो आपको सुकून देते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: लेकिन उसका प्रॉपर हल नहीं है तो वो नुकसान देगी बहुत ज्यादा,
1: ऐसी बात है। क्योंकि जब भी घर में अक्सर यही होता है किसी के सर में दर्द होता है तो वो फौरन कहते हैं कि एक कप चाय पिलाते सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसी बात है।
0: हमारे खून में शामिल हो गई है ना चाय, वो तो हम बाहर से जाए या आए तलब होती है कि यार एक कप चाय मिल जाए,
1: क्योंकि चाय एक रिवायत बन चुकी है हमारे घरों में। जब कोई मेहमान आते हैं या कोई भी आता है सो चाय पिलाई जाती है,
0: वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है,
1: हिस्सा है, बिल्कुल ऐसी बात।
0: और
1: है
0: इसका बेहतरीन, बस हमने उसको अब दूध डाल के उसको चाय बना लिया, हालांकि अगर हम इसको कल भी हमारी बात
1: इसी पॉइंट
0: चाय इस तरह नहीं है, चाय का मफहूम कुछ और है। हम लोग उसे पत्ती पानी में डालकर खूब उसे पकाते हैं, वो जिस तरह होटलों वाले दे फेंट रहे होते हैं, तो चीज
1: है
0: कि वो बस कह लें कि चाय नाम की है,
1: ऐसी बात,
0: ठीक है, उसकी अफादियत उतनी नहीं है,
1: ऐसी बात है।
0: अब बाकी इसके साथ जो है कि तशखीस जब होती है तो पता चलता है कि इसमें बाज दफा ये भी होता है कि एक जिसे हम कह लें टेंशन हेडिक्स,
1: हाँ जी,
0: ये भी सर के एक उसके दर्द में ही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है ना। अब उसमें से उसकी किस्म कह लें, अब बाज दफा वो सर के गिर पट्टी बांध लेते हैं बड़ी टाइट किस्म की और कुछ कोई मालिशें कर रहा है, कोई से दबा रहा है कि यार ये चीज हो, लेकिन असल में उसकी वजूहात देखें कि असल में वजह है क्या, मुस्तनद मुआलिज से किसी से मशवरा करें और उसका प्रॉपर हल करें। सर का दर्द है, नॉर्मली है, कॉमन है, आम है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सर्द हवा लगी तब भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा शोर गोल हुआ तब भी हो सकता है,
1: हाँ जी,
0: लेकिन देखना यह है कि उसकी उसकी एक प्रॉपर उसका एक सोल्यूशन निकले,
1: ठीक है,
0: आरजी ना हो, मुस्तकिल हो, फिर आप अपना जहनी दबाव जो है कम से कम लें। सोच फिक्रे हर शख्स के साथ है,
1: ऐसी बात,
0: लेकिन आप उसको अपने पे सवार ना करें, जब आप सवार करेंगे वो आपके सर दर्द के तौर पे सामने आ जाएगा,
1: जाहिर सी बात है।
0: फिर आप मुसलसल काम कर रहे हैं बैठ के, उस चीज को भी आप थोड़ा सा एक साइड पे करें, थोड़ा सा अगर बिलफर्ज है कई हमारे टेलर हजरात हैं, दर्जी हैं,
1: हाँ जी,
0: तो वो कोशिश करते हैं कि यार हम जो है مسلسل بیٹھے ہیں تو وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیٹھے جاتے ہیں،
1: ظاہر سی بات
0: مشین چلا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں گپے مار رہے ہیں، وہیں چائے چل رہی ہے،

0: उसमें भी बेहतर तो यह है कि अगर वो बीच में कोई 10-15 मिनट के लिए उठ के जरा थोड़ी सी वॉक कर लें और फिर बैठ जाए, तो ये चीज उन पे काफी उनकी बॉडी पे जो है असरअंदाज होती है। मुसलसल काम जो है ये भी सर दर्द का बायस बन जाता है। फिर उसके बाद आती है कि हमारे बैठने का अंदाज, बाज दफा हम अपने जिस्म को मरोड़ तरोड़ के बैठ जाते हैं, उस पे भी हमारे असाब पे हमारे पट्ठों पे दबाव आता है, खून जो सर्कुलेट कर रहा है उसकी सर्कुलेशन में भी फर्क आता है, दबाव से वो आगे जाता है, तो फिर वो भी सिर दर्द का बाइस बन सकता है। फिर नींद की कमी तो है ही है, वो तो हमारी रूटीन बन गई है कि हमने लेट नाइट सोना होता है, वो भी वजह है। फिर इसके साथ साथ थकन के काम में हम इतने रहे कि हमने अपने वजूद को हद से ज्यादा थका लिया,
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: ये चीज भी जो है वो भी असरअंदाज होती है। आगे चलें तो इसी वजह से ही बाज दफा माइग्रेन का मसला बन जाता है, दर्द शकीका या सर का दर्द है। अब उसमें भी देखना है कि उसमें और मुकम्मल सर के दर्द में क्या वजूहत है, क्या उसमें हम किस तरह कंपेयर करेंगे,
1: ऐसी बात।
0: इसीलिए मुआलिज से मशवरा जरूरी होता है। हालांकि सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स से बंदा पहचान सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो माइग्रेन है या आम आधे सर का दर्द है ये आम दर्द से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: उनमें एक कह लें कि वॉमिटिंग की सी कैफियत होगी, मछली की कह लें कैफियत मालूम होगी, रोशनी से वो दूर भागेगा, वो कहेगा यार मैं थोड़ा मुझे अंधेरे जगह पे मुझे करें, कमरे में जरा अंधेरा करें, पर्दे करें, मैं थोड़ा सा अगर वो इर्द गिर्द लोग हैं तो वो उनसे थोड़ा सा साइड मारेगा,
1: ऐसी बात है।
0: वो सुकून चाहेगा, शोर से भागेगा दूर। ये माइग्रेन के उसकी जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स हैं,
1: हाँ जी ऐसी बात,
0: वहां से जाके। और दूसरा फिर ये है कि जरा कोई काम करेगा तो अपने जिस्म में दर्द महसूस करेगा, और बाज दफा तो उसे ये जो बू वगैरह या स्मेल कह लें इससे भी वो एलर्जिक होता है, वो कहता है मैं इससे दूर हूँ,
1: चाहे वो अच्छी हो या
0: चाहे अच्छी है या बुरी है, बुरी से तो खैर दूर होना ही होना है, लेकिन अच्छी भी जो है
1: वो भी सर में दर्द,
0: वो भी उसके लिए तकलीफ देगी, वो कहेगा मेरे सर में दर्द शुरू होना शुरू हो गया। और इसीलिए जो है वो थोड़ा सा वाइट करेगा,
1: ऐसी बात है,
0: आंखों के गिर्द बाजू का तारे से झिलमिल झिलमिल से या अंधेरा सा आना,
1: ऐसी बात है,
0: ये चीजें हैं। तो उस पे फिर जो मुआलिज है वो उसको कंपेयर करता है जब उसके सिम्टम या उसकी केस हिस्ट्री लेता है कि ये आधे सर का दर्द है, इस सिम्टम्स के मुताबिक फिर उसका इलाज है। और इसकी वजह से बाज दफा ये होता है कि हम क्योंकि नजर हम मुसलसल अपनी इस्तेमाल करते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: बाज औकात हम उसे प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करते, तो नजर में कमजोरी है। जिस तरह पहले वक्तों में लोग सुरमा डालते थे,
1: बिल्कुल डालते थे,
0: माएं खुद ही डाल देती थी बच्चों को, वो बच्चों को बचपन से ही आदत हो जाती थी, बड़ेपन तक वो आंखों में सुरमा लगाते रहते। अब भी ऐसे बुजुर्ग हैं कि जो अभी भी सुरमा इस्तेमाल करते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: उससे आंखों की रोशनी आंखों की ताजगी बरकरार रहती है और उसकी आंखों की थकावट नहीं होती, और इसकी वजह से भी जब आंखों में कमजोरी आएगी नजर में तो इसकी वजह से भी सर दर्द रहेगा,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: अब उसके लिए भी वो मशवरा करेगा, देखेगा अपने आप को कि यार मेरी नजर वीक हो रही है। तो इस लिहाज से सर दर्द जो है वो एक वजूहत नहीं, कई वजूहत हैं,
1: ठीक है,
0: कि आप उसमें देख सकते हैं कि मेरे सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, उसके मुताबिक फिर सर दर्द का इलाज होता है। सर दर्द तकरीबन 70-72 किस्म का है।
1: अच्छा, 70-72 किस्म के अक्साम है सर के दर्द,
0: अक्साम है। अब उसमें नोट करना होता है, खाली हम एक पेनाडोल या पैरास्टामोल खा के तो हम वक्ती तौर पे तो सर का दर्द दूर कर लेते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: लेकिन बाद में जब वो होता है तो काफी बात शिद्दत से होता है, और बाज दफा वो कोई नया ही मर्ज जो है वो क्रिएट करता है सामने,
1: ठीक है।
0: फिर इसी वजह से बाज दफा ये कह लें कि जिनको नजला जुकाम रेशे बलगम की शिकायत होती है वो भी सर दर्द में मुबतला हो जाते हैं, उनको भी सर दर्द होता है। अब उसमें भी तशखीस करनी होती है कि यार ये इनका नजला जुकाम है, कब से है, इनका रेशा जो है या केरा अंदर गिर रहा है हलक में दिमाग से उतर रहा है, ये चीज भी उसके लिए सर का दर्द जो है उसकी वजह से भी हो सकता है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: ठीक है। अब वो सिर्फ कहां से पता चलेगा, वो सिर्फ मुआलिज ही बता सकता है उसको, उसकी तशखीस करके। अपने तौर पे तो उसने गोली खानी है, के याद में एक टैबलेट लूं और वो इस्तेमाल करूं और वक्ती तौर पे मैं अपना काम चाले करूं।
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: फिर बाज दफा हम लोग पानी में कंजूस हो जाते हैं कि यार थोड़ा पिया, और बाज दफा बहुत ज्यादा ठंडा पिया,
1: ऐसी बात
0: पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, पानी ठंडा निकाल दिया, फ्रिज से निकाले अभी भी। ये चीज भी नुकसान देती है, सर के दर्द को बढ़ाती है, और पानी की कमी जो है ये भी उसको मसले को बढ़ा देती है। तो इस वजह से फिर कमजोरी आएगी।
1: हाँ जी,
0: चक्कर भी इसी वजह से ही बाज लोगों को आते हैं कि जी मुझे चक्कर आते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही तशखीस हो सकती है कि सर दर्द किस वजह से
1: किस वजह से हो रहा है
0: और उसका इलाज क्या है।
1: ऐसी
0: फिर हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम, बस चंद लोग हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, उन्होंने शेड्यूल रखा है, लेकिन अक्सरियत जो है वो शायद वर्जिश से वाकफ ही नहीं है। वो वैसे बस कहते हैं यार हम चलते हैं मीलों, या हम बहुत ज्यादा सख्त काम करते हैं, तो उसी को वर्जिश से तशबीह दे देते हैं कि यार यही हमारी वर्जिश है।
1: ऐसी बात,
0: लेकिन अपने जिस्म को एक प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मूव करना या उसको वार्म अप करना कि वो गर्म हो, तो उसमें फिर पट्ठों में लचक आती है, उसके खून का जो दुरानिया है वो भी ठीक रहता है, तो फिर सर के दर्द का सवाल पैदा नहीं होता।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: फिर बाज दफा होता है कि कुछ लोग खाना ही नहीं खाते हैं टाइम से, काम में मसरूफ हैं, अच्छा ठीक है रखें जी ठहर के खाएंगे, या अब टाइम ज्यादा हो गया है शाम में देख लेंगे,
1: ठीक है
0: फिलहाल चाय पी ली, बिस्किट खा लिए। ये चीज भी जब आप खाना छोड़ते हैं इसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है।
1: अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा कि अक्सर ये आदत भी आजकल नौजवानों में पाई जाती है कि सोने से 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले खाना खा के फिर सो गए रात को।
0: ये भी गलत है,
1: ये भी गलत तरीका है ना।
0: बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैदे का काम है कि आपने जो करा है उसने साथ साथ उसका काम जारी है,
1: ऐसी बात है,
0: वो उसको हजम कर रहा है।
1: हाँ हाँ,
0: तो वो जितना आप जल्दी खाते हैं और आप उतनी देर में अपने घर में मसरूफ रहते हैं कामों में, तो उससे खाना मैदे को हजम करना आसान हो जाता है।
1: ऐसी बात है।
0: और दूसरी बात है कि वो लाइट किस्म का होता है, कोई इतना ज्यादा हैवी नहीं होता। फिर आजकल ये वाकई फैशन सा बन गया कि ठीक है यार बेड के ऊपर ही खाना है।
1: ऐसी बात।
0: और शॉर्ट से टाइम में फिर लेट जाने
1: दोपहर को भी यही होता है और रात को तो अक्सर यही मामला चलता रहता है।
0: चलिए किसी हद तक है कि वो बाज में लिखा है कि आप कलोला करें, जैसे थोड़ा सा आराम कर लें वो बेहतर है, लेकिन खासकर क्योंकि दिन में आपने थोड़ा आराम भी कर लिया, उसके बाद आपने अपने मामला भी करने हैं,
1: ऐसी बात है, अपने चलना चलना है, ऐसी बात
0: वो हजम हो जाता है। लेकिन रात में ऐसा नहीं है, और खसूसन जैसे अब मौसम सर्द आ रहा है तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें रातें तकरीबन बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो आदमी कोशिश करता है कि यार बस ठंड है तो मैं जरा जल्दी से बस खाऊं और अपने बिस्तर में पहुंचूं। ये चीज नुकसानदेह है, उसको टाइम दें। फिर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा चाय का, कॉफी का इनका इस्तेमाल ना हो, एक महदूद मुनासिब मिकदार में हो जाए तो वो
1: ऐसी बात
0: फिर भी ठीक है, चल जाता है। लेकिन अगर आप मुसलसल चाय पे हैं कि जरा सा थकावट हुई, चाय ले ली, गोली खा ली, चाय ले ली, या सुबह दोपहर शाम वो एक चाय तसलसल से चल रही है, तो वो चीज फिर नुकसान दे सकती है और उसकी सर दर्द की वजह भी बन सकती है। और उस वजह से फिर आप हालांकि चाय सर के दर्द को दूर करने के लिए आप चाय पीते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: तौर पर वो सुकून देती है, लेकिन वो एक जब मुसलसल आदत बनेगी तो फिर आपका सर दर्द जो है वो चाय से भी नहीं जाएगा।
1: जाहिर सी बात है, ये तो
0: फिर आपको उसके लिए प्रॉपर एक दवाई लेनी पड़ेगी,
1: ऐसी बात है,
0: और तब जाके वो आप उससे छुटकारा पाएंगे।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: फिर नींद जो है वो तो लाजमी है, नींद के बगैर अगर आप कहें वैसे है कि 7-8 घंटे आप प्रॉपर नींद लें,
1: ठीक है,
0: लेकिन कुछ काम की नोयत ऐसी होती है कि लोग कुछ 2 घंटे, कुछ 4 घंटे, कोई 1 घंटा, लेकिन जितनी भी नींद है प्रॉपर तरीके से नींद हो, नींद में ये ना हो कि यार बस मैं उठाऊं जैसे सोया हूं 10-15 मिनट के बाद मैं उठ गया हूं, उसको प्रॉपर कुछ टाइम दें, प्रॉपर नींद करें,
1: ऐसी बात
0: तो
1: है। हाँ।
0: फिर आप जो है उसका आप सर के दर्द को नहीं अपने पे सवार करेंगे, और
1: हाँ जी।
0: ना ही कभी ऐसा होगा कि आपका सर में दर्द हो रहा है। कोशिश करें कि आप अपने टाइम पे सोएं,
1: बिल्कुल,
0: और जो है ज्यादा देर तक किताब है, मोबाइल्स है या कंप्यूटर्स है, इनको ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें,
1: ऐसी बात
0: अपने
1: वैसे,
0: हाँ। दिमाग को सुकून हाँ दें, अपनी निगाहों को सुकून दें, आराम दें, तो फिर सिर का दर्द का सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: ऐसी बात है कि सब वैसे आजकल किताबें तो कहीं दूर ही रह गई हमसे, आजकल मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बस यही चीजें आजकल, तो हम एक दूसरे से भी बात नहीं करते,
0: ऐसा ही है।
1: अब आजकल देखिए आप किसी महफिल में कि जहां पर 10 बंदे बैठे हों, पहले आप हमसे बड़े हैं हकीम साहब, तो आप खुद ही बताएं कि आपके यानी कि पहले जमाने में जब 10-15 लोग आपस में बैठते थे तो बातें क्या करते थे, आजकल जब 10-15 बंदे भी बैठे होते हैं ना, अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं।
0: वजह यही है कि आप बहुत दूर हो गए ना, हम उससे फितरत से दूर होते जा रहे हैं।
1: ऐसी बात है, हाँ।
0: अब आर्टिफिशियल जिंदगी में कदम रख चुके हैं और उसी वजह से हम ज्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। अगर वही हम फितरत के ज्यादा करीब हों तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस्म इतनी जल्दी खराब हो जाए। बाकी दबाव है, परेशानी है, स्ट्रेस है, ये एक कॉमन मसला है। इसको आप तकरीबन हर आदमी कह सकते हैं कि वो ज़हनी तौर पे बेचारा परेशान है क्योंकि हालात ऐसे हैं, लेकिन उसको आप अपने पे हावी ना करें। आप सोचें जरूर, उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालें, लेकिन चीज ये है कि आप इतने दबाव भी ना लें कि मुसलसल आप सरदर्द के मरीज बन जाएं।
1: ऐसी बात है,
0: ठीक है ना। उसको आप ले सकते हैं, आप लाइटली लें, उसका हल तलाश करें और उसके बाद उसे जहन से झटकें।
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: वरना जो है फिर वही है कि दवाइयां हैं और आप हैं।
1: ऐसी बात है, आप हैं और दवाइयां हैं,
0: बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि आप दवाइयों के गिर्द ना घूमें और दवाइयों से जहां तक हो सके आप दूर रहें, और उसी में एक फिटनेस का राज भी छुपा हुआ है कि आप देर तक अपने वजूद को कायम भी रख सकते हैं और मजबूत रख सकते हैं। बाकी कुछ लोगों का जिस तरह पहले बात हुई है, ये गर्दन के पट्टे जो हैं ये अकड़ जाते हैं, ठीक है, तनाव वगैरह आता है तो कंधों में आ जाता है, ये भी बार दफा सिर का दर्द बाइस बन जाता
1: अच्छा।
0: है इससे भी, क्योंकि सारे पट्टे अपना काम कर रहे हैं, इसकी वजह से भी सिर का दर्द हो सकता है। उसकी वजह कि मुसलसल आप एक ही पोजीशन पे बैठे हुए हो, आप अपनी पोजीशन ही तब्दील नहीं कर रहे, तो जब आपके असाब सुन्न हो रहे हैं या अकड़ रहे हैं या तो वो फिर आपके दिमाग की तरफ भी जो है उसका असर जाएगा और आप सर दर्द महसूस करोगे।
1: ये तो होगा,
0: बाज दवा ये होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने आप को नीचे की तरफ झुका लेते हैं,
1: ठीक है,
0: के देख रहे हैं तो वो नीचे की तरफ गर्दन उनकी झुकी पड़ी है, ये चीजें जो हैं ये आपके सर दर्द का बाइस बन सकती हैं,
1: ठीक है,
0: क्योंकि इन्होंने आपके पट्ठों में खिंचाव पैदा करना है, ब्लड के सर्कुलेशन में फर्क आएगा और फिर आप दर्द महसूस करोगे। उससे बेहतर है कि आप अपनी पोजीशन भी बदलें, बेशक आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल में हर आदमी अपने फेल का जिम्मेदार है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ आप अपनी पोजीशन को भी बदलें, एक पोजीशन में ना रहें।
1: ऐसी बात है,
0: थोड़ा रिलैक्स करें और उसके बाद आप फिर दोबारा शुरू कर लें।
1: हाँ जी,
0: ठीक है, और फिर कोशिश करें कि जब भी आपको सिर में कोई दर्द या कोई ऐसी चीज महसूस होती है तो आप अपने तौर पे फौरी तौर पे मेडिसिन लेने की ना करें। पहले तो थोड़ा सा तहम्मुल करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अगर उससे आपको बेहतरी आती है तो फिर तो बहुत बेहतर है।
1: ऐसी बात है,
0: और नहीं फौरी तौर पे कोई टैबलेट ना लें तो कि मैं वक्ती तौर पे तो तैयार हूं ना, मैं अपना काम मुकम्मल करूं बाद में देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप कोई वक्त निकाल के मुआलिज से मिलें और उसे प्रॉपर बात करें।
1: ऐसी बात,
0: ये मेरे साथ हो रहा है और ये वजह है, ताकि वो आपको बता सके कि क्या वजह है। बाज दफा हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनको भी सर दर्द की शिकायत होती है,
1: उनको तो ज्यादा होती है कैंसर।
0: अब चीज ये है कि वो जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा मुझे ब्लड प्रेशर है,
1: बिल्कुल ऐसी बात,
0: इस वजह से है या सर का दर्द वैसे हो रहा है, ये चीजें सारी बाद में उससे मशवरा करने से फिर सामने आ जाती हैं, अपनी तरफ से नहीं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं समझूं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया मैं जल्दी से गोली खा लूं, तो ऐसा नहीं है। पहले आप तशखीस करें उसके बाद। अब कहते हैं कि सर का दर्द खतरनाक भी हो सकता है,
1: जाहिर सी बात है। अच्छा हकीम साहब, हमने ये सुना है कि सर के दर्द की वजह से सर की रग भी फट सकती है।
0: वहाँ वो अगर बहुत ज्यादा दबाव आप लेते हैं, बाज रगें जो हैं, बाज वेन्स जो हैं वो बिल्कुल नाजुक हैं, कमजोर हैं, और उस वजह से फिर वो नस जो है जिसे कहते हैं नस फटना या डैमेज होना, तो वो खून जाहिर बात है।
1: यानी कि हकीम साहब, जो बंदे जिन बंदों का मुसलसल ये मसला है सर के दर्द की वजह से, वो इलाज नहीं करा रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं,
0: वो देखा जाए तो फिर अपने साथ ज्यादती भी कर रहे हैं ना।
1: ऐसी बात है
0: तो हाँ। उसमें यह है कि जब तक आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे, वक्ती तौर पे आप गोलियां खा खा के उसको दबाते जाएंगे तो उसका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। उम्र का एक हिस्सा होता है जिसमें आदमी सब कुछ बर्दाश्त करता है, और बाज दफा उम्र के इस हिस्से में होते हैं जहां थोड़ा सी भी चीज बर्दाश्त नहीं हो पाती।
1: बिल्कुल ऐसी बात,
0: हमारा जिस्म सदा ताकतवर तंदुरुस्त नहीं रहता, ये कमजोर भी पड़ना है। हमारे अज़ा जो है, दिल दिमाग गुर्दे मैदा दांत हर चीज हमारी कमजोर पड़नी है, और एक टाइम पे फिर वो आके फना भी होनी।
1: बिल्कुल ऐसी बात,
0: तो हमें उस वजह से अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा कि हम उसको उस तरह लेके चले ना।
1: हाँ जी,
0: अब के अगर सिर दर्द है और अचानक ही शदीद शुरू हो जाता है,
1: ऐसी बात है,
0: तो
1: हाँ।
0: फिर आपको फौरी तौर पे मिलना पड़ता है मुआलिज से, उसके लिए आप फौरी तौर पे गोली ना लें।
1: बिल्कुल ऐसी
0: बात, पहले आप पता करें कि मुझे क्या वजहात हो सकती है, क्या है, और इसके बाद के बाद दफा चोट लग जाती है।
1: हाँ जी, बिल्कुल
0: गिर जाते हैं, कोई अल्लाह ना करे कि रोड पे कोई ऐसा वाकया हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है अगर दर्द शुरू हो रही है तो फौरी तौर पे आपको मिलना पड़ेगा, आपको मशवरा करना पड़ेगा।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि मेरे साथ ये हुआ, बाद का बेहोशी हो जाती है या कोई शदीद गनूद भी आ रही होती है, उस पे भी बोलने में अगर आपको मुश्किल आ रही है तब भी फिल फौर गोली का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप फौरी तौर पे मुआलिज से मशवरा करें ताकि असल हकीकत नजर आए। फिर अचानक आपकी नजर में तब्दीली आ जाती है, नजर आपकी एकदम कमजोर हो रही है, उसको भी आप लाइटली ना लें। बाज का तेज बुखार अचानक हो जाता है और आपकी गर्दन अकड़ रही है, तो उसमें भी आप सर दर्द को ना देखें, बल्कि आप फौरी तौर पे अपने मुआलिज से मशवरा करें कि मुझे साथ बुखार भी है, मेरा जिस्म भी, मेरी गर्दन अकड़ रही है, वो फौरी तौर पे तशखीस करके आपको उसके मुताबिक फिर आपको दवाई देगा।
1: ठीक है,
0: उसके साथ साथ जो है ये चीज खत्म हो जाएगी, और बार बार जैसे उल्टियां या वॉमिटिंग आ रही है उस पे भी जो है आपको थोड़ा सा फौरन मशवरा करना पड़ेगा। तो चीज ये है कि आप जब तक प्रॉपरली अपने मुआलिज से मशवरा नहीं करेंगे,
1: जाहिर सी बात
0: आप,
1: है,
0: आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि ये कौन सा सर का दर्द है, आपकी तो नजर में वो सर का दर्द
1: है। ऐसी बात है, आप पूरी जिंदगी वो जो है ना, आप रेगुलर दवाइयां लेते रहेंगे,
0: फिर आप यही है। और अक्सर ऐसे ही होता है कि हम लोग गोलियां पास रखते हैं कि यार फौरी तौर पे अगर हुई तो हम एक गोली निकालेंगे, पानी से लेंगे,
1: ऐसी बात,
0: और ऐसे ही एड टीवी पे चल रहे होते हैं कि ठीक है ये दो गोलियां पैरास्टामोल की आप खा लें पानी के साथ,
1: ऐसी बात है,
0: आपका फौरी तौर पर। लेकिन वो साथ ये भी होता है कि आप मुआलिज से मशवरा जरूर करें,
1: बिल्कुल ऐसी
0: बात, अपने तौर पे इस्तेमाल ना करें। लेकिन इस पे थोड़ा सा मेरी भी लिसनर से यही दरख्वास्त है कि अगर ऐसा कोई मसला होता भी है तो आप पहले मुआलिज से मशवरा जरूर करें।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल,
0: अपने तौर पे टोटके नुस्खे वक्ती दवाइयां कोशिश करें कि इनसे जरा थोड़ा सा दूर रहें, मशवरा करके मुआलिज से उसकी हदायत के मुताबिक चलें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपने मर्ज को काबू में कर सकते
1: चले। ठीक है हकीम साहब, ये बताइएगा कि क्या सर की जितने भी आपने कहा कि 72 अकसाम में दर्दों की, तो इन जिस किस्म का भी सर का दर्द हो, क्या इसका इलाज अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग में मौजूद है?
0: इसका इलाज कुदरती जड़ी बूटियों में बिल्कुल मौजूद है।
1: अच्छा माशाल्लाह।
0: हाँ, जितने हमारे मुस्तनद इदारे हैं, कशी है, अजमला है, हमदर्द है, हर इदारा या हर दवाखाना वो इन जड़ी बूटियों से इस्तफादा हासिल करता है।
1: ठीक है,
0: इनके लिए प्रॉपर मेडिसिन बनी हुई है जो कि एलोपैथिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: हाँ, जहाँ तक अलशिफा दवाखाने की बात आती है तो वो ये है कि जब मरीज आता है तो पहले तो उसकी तशखीस करनी है कि आया इसकी वजूहात क्या है सिर के दर्द की, फिर उस मर्ज के मुताबिक उसकी दवाई उसका इलाज मौजूद है और वो उसे मिलेगा प्रॉपर।
1: चले ठीक है। सो बिल्कुल खवातीनो हजरात, आप बस्ते हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ और सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं, जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। سو روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ہم بالکل لائف اور براہ راست ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی آن ایئر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, اور آج حکیم صاحب نے بڑی ڈیپلی اور بڑا ہی خلاصے کے ساتھ آپ کو بتایا ہے سر کے درد کے بارے میں. سو جناب

0: 88.4
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
5: इट्स 2 o'clock. आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन जन रंग अमन।

ओके सनाफ सलाम भाई, कैसे भाई? मेरी बहन नो टेंशन शैम्पू है, रॉयल राइस फेस वॉश सन ब्लैक यूज करते हैं, सनम शो सुनती हैं, मेरे साथ आपको सलाम दे रही हैं सिर बाप, थैंक यू सो मच डियर वनन, वालेकुम सलाम। राइस फेस वॉश फॉर्मूले क्रीम नो टेंशन आर्टिफिशियल शैम्पू से मिलवी सीधे रहम सीधे मन जमा खोरे से मिलवाई और नूर जी सुमन हम जमुई को फैन दी गए पैगाम के जगह इस्तेमाल की शाम।

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: मैंने टिकटॉक पे एक राइस फेस वॉश देखा था जिसको मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, मगर इसका रेट बहुत ही ज्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वॉश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342 311 2292 पर कॉल

हिदायतुल्ला वाई छे टांग मेन सिटी तंग बाजार बनूची होटल निज़द हमजा जनरल स्टोर मेज में के तमाम प्रोडक्ट मौजूद है। रजिया तमरन थैंक यू खुशहाल हो सिखान अस्सलाम वालेकुम भाई दर्द हुए जमा खोर तजान ला रागलम शॉप की यम कुछ सिद्धि बार हर लिख ली थी इश्म विख्तोर अपार सही इस्तेमाल के मनो इश्म आयल रवाख मालिश को बड़े आपको सर को सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह अली ने खबर कुम दुआगान सलाम वालेकुम सलाम आयशा मुबारक सलाम दे वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह जैनब द मरदान मंग दासी नहीं खा मंग शापर खुदा पाकर तासु में नहीं याद करी के ना मंग जान याद करे दे गोर जो मंग हो तो पर्दो पर शादी हाल की मंग सकार दे सही था चोर दने की हो मंग जान याद करे मर्द जान याद करे मर्द खपल मतलब जनाना खपल फैमिली और खपल चिकम मतलब जमंग प्रोग्राम दख में याद करी थी हाँ तासु में नहीं याद करी हो रे हाँ मातवा मखान लाला सिंह शो त राशि पमा सम ईद भी फेवरेट भाई दासो तमी सरलेश पुरोम बादर वाला।

दुबई बाजार के पड़ बाबा के दन्ना जोंग टावर दे सुपर मार्केट से बिल्कुल निजदे जासिम एंड ब्रदर दुकानदार देखम खैन दिन पकुरुन के प्रोडक्ट खरसावल वाड़ी अरजान कीमत सर अगस्तल वाड़ी नु जासिम एंड ब्रदर जमंग मेन डीलर देखा दत्ता खबई दे सर तमाम प्रोडक्ट मिलावी के सही था और तासु दे अगस्ते हरियो प्रोडक्ट सर संग भाई चेता सो प्रोग्राम खुसम बेस्ट दे इनाम सर प्रशांत सर जी इश्मा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद फ्रॉम ब्यूटीफुल शंकर बुजर संग है प्रोग्राम दे पुरन खुश होगा ना बुजरा ड्राला माशाल्लाह रगले वालिद से बहुत ही खपन कतीरा कतीर मल बल गिब में दरकोल खबर हल इंशाल्लाह बिया बची खा बिया में पैदा नहीं कि बस चाहिए हो कुमार सर मिलाओ सारे तो जाता मना रखा तदुमर तकलीफ को दुमर राले मंगल दे गिब रोको नो स्थानीय जिकम दे कना खबर था मंगल ये वने की।

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pagram 97.4 Pahadpur, Global FM 91 Dear Asmal Khan, and the Radio Aman 88.4 Tan. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नच पाकिस्तान की, ये आवाज है सेहत और तंदुरुस्ती की, ये आवाज है शिफा की, और ये आवाज है हुस्न और खूबसूरती की। जी जनाब, हर रोज की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि जनाब सुपहर के 4 बज चुके हैं। तो जनाब हमारी तरफ से सलाम कबूल कीजिएगा। हफ्ते का दिन है आज, 13 रबीउल सानी है, 26 सितम्बर और अस्सू की 11 तारीख। ये तो सामने क्राम, कैसे हैं आप सभी लोग जनाब? उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैं बिल्कुल जी फाइन निशान, चमकता हुआ, धमकता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, चहचहाता हुआ हूँ, मेरे तमाम चाहने वाले, तमाम बुजुर्ग, तमाम फ्रेंड्स, तमाम फैंस, तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा एंड चाचीज, माम एंड मामी, दादा एंड दादीज एंड नाने नानीज, ऑफकोर्स सभी सुनने वाले बिल्कुल जी खैरियत के साथ होंगे और अपने जिंदगी का एक और कीमती दिन बिता चुके होंगे। जारी बात है, आज का दिन आप जो गुजार चुके हैं, 7-8 घंटे सुबह से लेकर अब तक के 8-9 घंटे गुजर चुके हैं जनाब, बल्कि मॉर्निंग से शुरू करें तो कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। तो इन घंटों के अंदर जनाब कुछ न कुछ आपने हासिल किया होगा। आप में से बहुत सारे लोग काम अपना खत्म करके आ चुके होंगे, मजदूरी वगैरह करके आ चुके होंगे, कुछ लोग दुकान के ऊपर मौजूद होंगे, काम भी कर रहे होंगे। सामीन ग्राम कहते हैं कि काम तो हर किसी ने करना है, 4 पैसे आपको तभी आते हैं, पैसे आपकी जेब के अंदर तभी आते हैं जब आप अपना खून और पसीना बहाते हैं। अदब में डूबी सांसों में, इसी वजह से जनाब कहा जाता है पैसे तो और भी बहुत से तरीकों से आपके पास आ जाता है, लेकिन जो खून और पसीने की कमाई होती है, जो मेहनत करके आप अपने आप को थका कर, अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ देकर, आपके जिस्म का खून भी जलता है जब आप मजदूरी करते हैं, पसीना भी निकलता है, थकावट भी जिस्म के अंदर आती है और आप थकते भी हैं, तो ये निशानी होती है कि आपने अपने बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाया है। कुछ रिस्क अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए बनाए जो अपनी एबिलिटी से, काबिलियत की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपने जहन को इतना इस्तेमाल करते हैं कि उनको पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको इतनी थकने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने जहन से कुछ इतना कमाल कर चुके होते हैं कि उनकी जिंदगी बड़ी सहल होती है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि कोई भी काम हो सामीन इकराम, किसी भी काम को जब आप करते हैं और उस काम को जब जितनी मोहब्बत से आप करते हैं, काम तो आपने हर रोज करना है क्योंकि अपने घर का घर बार चलाना है, अपने बच्चों के लिए रोजी कमा के लेके जानी है, लेकिन कुछ लोग एक ही जगह होते हैं और 10 से 20 साल बाद भी वो एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो टाइम पास कर रहे होते हैं। जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं ना, आप यकीन जानिए कि वो बहुत जल्दी राजा बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं, उनके पास एक इज्जत वाला पेशा आ जाता है। वही लोग उसी जगह के ऊपर हमेशा रहते हैं जो टाइम पास करते हैं, जो वक्त गुजारते हैं कि 8 घंटे 9 घंटे किसी तरीके से मैं यहाँ से निकाल लूं, बस पैसे, नौकरी खड़ी कर लूं, पैसे खड़े कर लूं। इस तरीका, इस अंदाज के साथ बहुत सारे लोग खुद को जो है वो 30 मरखान भी समझते हैं, होशियार भी समझते हैं कि मैंने अपने उस्ताद को कितना धोखा दे दिया, मैंने मालिक को कितना धोखा दे दिया, पूरा दिन मैंने गुजार लिया 1200-1500 की मजदूरी करके जा रहा हूं और मैंने इधर उधर के काम किए। वो बेसिकली अपने आप को धोखा दे रहा होता है, वो किसी और को धोखा नहीं दे रहा होता, वो अपने आप को हमेशा के लिए उस जगह के ऊपर उसी हालत में रखना चाह रहा होता है जिसमें वो आया था। तो काम के साथ मोहब्बत, मुझे इस वक्त सुनने वाले बहुत सारे दुकानदार भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे शिगिर्द भी सुन रहे होंगे, नौकरी पेशा लोग भी सुन रहे होंगे, आप कहीं पर भी औकात, जब भी लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना, पैसा उनसे भी आगे भागता है। पैसा अगर कमाना है तो सबसे पहले वैल्यू के ऊपर अगर काम किया जाए, अपनी वैल्यू बनाई जाए, पैसा खुद ब खुद इंसान के पीछे आता है। लेकिन ऐसी बातों को बहुत कम लोग समझते हैं और पैसा बनाने की धुन में लगे रहते हैं, वो भी इस तरीके से एक काम चोरी करते हैं। आप अपने काम के साथ मोहब्बत आपको बादशाह बना देती है, राजा बना देती है, और अपने काम के साथ टाइम पास करना, उसको दिल से ना करना, हमेशा के लिए आपको नौकर रखता है, हमेशा के लिए आपको मजदूर रखता है, इससे आगे आप कभी भी नहीं बढ़ पाते।
1: खुदा को हमने बेपरदा
0: जीजना, मुझे कहते हैं खलील ताबे शवान और आप लोगों के साथ मौजूद हूँ पूरा 1 घंटा आपसे लेकर 5 बजे तक। ये है टी टाइम, मेरी चाय बिल्कुल मेरे पास पहुंच चुकी है और उसका तीसरा हिस्सा जो है मैं नोश कर चुका हूँ, मलाई वाली चाय के साथ लाइची वाली।

लिए, बालों को लंबा करने के लिए केसन हेयर ऑयल, बालों को साफ सुथरा रखने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए, सिल्की बनाने के लिए केसन का शैम्पू मौजूद है। हमारे डिफरेंट किस्म के सात किस्म के साबुन हैं जनाब, उनको इस्तेमाल कीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। केसन का उपटन सोप, कोजिक एसिड सोप, राइस शाइन सोप, केसन का ग्लूटा वाइट सोप, केसन का मिल्की सोप, केसन का टी ट्री यानी के गो पिंपल साबन। ये सारे प्रोडक्ट जो है आपकी स्किन की बेहतरी के लिए। मुझे आज सुबह सुबह ना एक डॉक्टर हैं, वो मेरे कांटेक्ट में होते हैं, मेरे स्टेटस वगैरह भी देखते रहते हैं, और उनका ताल्लुक है यूसुफ चौक का जो एरिया, यहाँ पर रहते हैं कबीर फार्मेसी, डॉक्टर कबीर साहब हैं। तो उनके रात मुझे मैसेज आया, असलाम दुआ की हुई थी, मैंने भी वालेकुम सलाम कह दिया। आगे मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनको बोलता कि सर क्या खिदमत है, किस तरह याद किया। बहरहाल सुबह फिर उनकी कॉल आ गई मुझे 10 बजे के करीब। तो कहने लगे कि यार आपका ना एक उस दिन एक बंदा आया मेरे पास, आपकी वेट कम पेट कम फक्की उठाकर ना, तो मेरे पास लेकर आया, तो मुझे कहा डॉक्टर साहब मुझे ना इन चीजों से बड़ी डर लगता है कि इससे ना कोई नुकसान ना पहुंच जाए, तो ये मैंने ली है, ये मुझे चेक करके दें इसके अंदर कोई केमिकल स्टीराइड तो इसके अंदर नहीं है। तो मैंने जैसे डब्बी खोली तो वो मुझे याद आ गया केसन तो आपकी कंपनी है, स्टेटस भी लगे होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, ये कंपनी बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट बनाती है, डॉक्टर कबीर साहब की यूसुफ चौक अड्डा पर, यहाँ पर उनकी क्लिनिक है। तो कह रहे थे कि नहीं यार इनकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी होती है और ये नेचुरल होती है, इनके अंदर कोई स्टीराइड केमिकल्स इनके नहीं होते। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछ लिया, आपने भी किस लिए लिए, ये कहाँ से लिए? तो वो कहने लगे भाई कि डॉक्टर साहब मेरे एक दोस्त हैं, उनका पेट बड़ा बड़ा हुआ था, तो उन्होंने इस्तेमाल की तो उनका पेट अंदर चला गया। तो मैंने उससे जब पूछा कि भाई ये तुमने क्या इस्तेमाल किया, तो उसने मुझे डब्बी दिखाई कि यार ये मैंने 2-3 इस्तेमाल किए हैं, तो मेरे तो मोटापा और ये पेट अंदर चला गया, बिल्कुल स्मार्ट हो गया। तो कहते मैंने ले ली। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैंने उस बंदे को कहा यार आप इसको ना इस्तेमाल करो, अगर आपकी पेट बड़ा हुआ है ना तो आप इस्तेमाल करो, जिस तरह उस भाई को रिजल्ट मिले आपको मिलेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि साइड इफेक्ट इसके नहीं है क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है इनकी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो लेके चला गया। तो 3 दिन बाद मुझे मिला कल, तो मैंने कहा भाई हाल सुनाओ, वो जो प्रोडक्ट तुमने ली हुई थी क्या हुआ ना उससे? तो वो कह रहे थे डॉक्टर साहब अभी पेट तो अंदर नहीं गया, 3 दिन हुए हैं, सारी टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि मेरे साथ एक जो बड़ा मसला आ रहा था ना, कब्ज का मसला, वो बहुत खत्म हो गया 3 दिन से। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैंने उसे बताया भाई इतना तो हम भी आप लोगों को बताते हैं कि ये गैस और कब्ज की जो कंडीशन होती है ना, यही इंसान को मोटापे की तरफ लेके जाती है। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैंने उसे कहा कि जब तुम्हारा ये मसला हल हो गया है ना, तो अब जो है तुम्हारा मोटापा और तुम्हारी चर्बी भी पिघलेगी, यानी कि अब हमारी ये प्रोडक्ट, ये वो वाहिद प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 2 डॉक्टर्स ने कमेंट किए हैं, एक डॉक्टर कबीर, एक पहाड़पुर में जनाब, ये जो आपका हॉस्पिटल रोड है यहाँ पर डॉक्टर वहीद साहब बैठते हैं, गेस्टों के डॉक्टर हैं। तो उनके पास जब हमारी प्रोडक्ट गई, तो जब उनसे मिले तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या रिस्पांस है? कहते यार पहले तो मेरा बिलीव नहीं होता था इन चीजों के ऊपर, फिर मैंने कहा यार लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, लोग मांग रहे हैं तो क्यों ना मंगवा लें। तो कहते कि मैंने खुद अपने लिए इस्तेमाल किया और 4 दिन बाद मैंने अपना जब यूरिन टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था, यानी कीटोन पॉजिटिव थे, यानी कि उन्होंने हमें बताया कि भाई आपकी ये प्रोडक्ट जो है ना मेडिकली टेस्टेड है, यानी कि इससे अगर कोई सबूत मांगे ना कि भाई ये प्रोडक्ट रिजल्ट देती है या नहीं देती, उसे कहो कि इसको 5-6 दिन खाने के बाद ना अपने छोटे पेशाब का टेस्ट करवा लो, टेस्ट के अंदर टेस्ट आपको बताएगा कि आपका छोटा पेशाब नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर चर्बी पिघल के आ रही है। तो ये दो तीन डॉक्टर्स ने हमें हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कॉमेंट्स किए, कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि वाकई ये प्रोडक्ट आपकी इतनी जबरदस्त है, और वो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि वजन बढ़ाने की बात, और आज मैं आपको चलो कहानी सुना रहा हूँ तो एक और कहानी सुनाता हूँ, ये आज की कहानी है। पहाड़पुर के अंदर जनाब हमारे एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नवीद होलसेलर, मैं जिनका नाम उठाता हूँ। तो आज जब हम उनसे मिले ना, तो उन्होंने ना 4 खाली पैक हमारे सामने ताकत प्लस के रखे, ताकत प्लस के खाली डब्बियां थी। तो मैंने कहा ये खा गए हैं आप लोग? मैंने ऐसे उनको कहा ना, मैंने कहा खा गया उसको? कहते नहीं जनाब। दूसरी तरफ से जब किया

खाली डब्बियां थी। तो मैंने कहा ये खा गए, अब तक खाया हुआ था, यानी कि चूहे ने उसको खा लिया। 4 या 5 जार थे, खाली डब्बियां थी। तो मैंने कहा ये खा गए आप लोग, मैंने ऐसे उनको कहा ना, मैंने कहा खा गया उसको, कहते नहीं जनाब। दूसरी तरफ से जब किया तो वो जो जार था ना, जो इस तरीके से ना बिल्कुल करतब दिखा रहे होते हैं, तो वो कहते ऊपर पहुंचा दिए सारी की सारी ताकत, प्लस कहते हैं कि हमने यहां से दुकान से उठाकर दूसरी बाहर वाली दुकान के ऊपर रखवा दी है, क्योंकि ये चूहों की अब पसंदीदा खुराक बन चुकी है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, उन्होंने जो बात की है ना, उन्होंने कहा यार आप शो के अंदर ये बात बताओ, जिस घर के अंदर चूहे हैं ना, जिस घर के अंदर भी चूहे हैं, ये चूहों की बताते हुए अजीब लग रहा है, कहते हैं कि यार इतने जल्दी इसके ऊपर चूहे आते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी जहर मिलाकर रख दो, चूहे फौरन मर जाएंगे। यानी कि ये हमारी शॉप के ऊपर कहते हैं यार ये 5 डब्बियां खा गए हैं, किसी और चीज को हाथ भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ यही चीज खाते हैं, यानी कि ये चूहों को बहुत ही पसंदीदा। ये तो यार हमने बनाई हुई आप लोगों के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए, आपके जिस्म को ताकत देने के लिए, आपके जिस्म को भरने के लिए। लेकिन वो ऐसे ही मैं आपसे एक स्टोरी शेयर कर रहा था जो कि रियल स्टोरी है, कोई बनी बनाई नहीं है। ये उन्होंने कहा था यार ये तो चूहे पकड़ने के लिए ना बड़ी जबरदस्त है कि इसके ऊपर चूहे बड़े जल्दी से आ जाते हैं ना। मैंने कहा हम रिकमेंड नहीं करते भाई, हमने इंसानों के लिए बनाई है। ये और बात है कि वो इतनी मजेदार है, ताकत प्लस इतनी टेस्टी है, इतना उसका जायका है कि जनाब चूहे भी उसको नहीं छोड़ते। तो कहने का मकसद ये था, और साथ में उन्होंने जो दूसरी बात बताई कि यार बंदों की तो हेल्थ हम देखेंगे, लेकिन अपनी दुकान की चूहों को हमने अच्छा खासा सेहतमंद होता।

खलील भाई कह रहे हैं कि खलील भाई जिंदाबाद और खलील भाई की केसन कंपनी भी जिंदाबाद। सईद रहमान कोट दौलत से हमारे साथ, हमें फेसबुक लाइव के ऊपर सुन रहे हैं जनाब। जी जनाब, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।

0: एक साथ हमें मोहब्बत से सुन रहे हैं, किसी की कॉल लगती है किसी की नहीं लगती, और एट ए टाइम
1: अगले ट्राई कर रहे होते हैं खलील भाई, ये नहीं है कि प्रोग्राम में ट्राई नहीं कर रहे होते, बस बाजों की कॉल लग जाती है, बाजों का नेटवर्क इतना लूज होता है कि कॉल है ना जाती जाती आती आती हुई भी ड्रॉप हो जाती है,
0: ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि तीनों शहरों से लोग कॉल मिला रहे होते हैं तो फिर वो एक नंबर के ऊपर रश भी लग जाता है ना, तो वहाँ पर फिर कॉल का लगना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब, खैरियत से हैं?
1: अल्लाह का एहसान है खलील भाई, शुक्र है उसके साथ का, तुम्हारे केसन को भी तुम्हें भी दुआ करते हैं।
0: अच्छा जी, माशाल्लाह केसन भी इस्तेमाल हो रही है आपकी लाइफ में, प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम नहीं सुन रहे बल्कि 24 घंटे में केसन कहीं ना कहीं आपको घर में नजर आ ही जाती है।
1: वो तो तुम्हारे सामने ही है कितनी लेके आते हैं, ये है नहीं है कि हम किसी और से उठा के लाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही वैसे पूछ रहा था मैं, आदत है ना पूछने की, वो तो हमें पता है जो बंदा कॉल करता है तो फिर हमें पता होता है ना उसके, ये तो हमारा पक्का यूजर है जनाब।
1: केसर के बगैर गुजारा है भी नहीं,
0: गुजारा है भी नहीं, हर दिल को भा रही है केसन, ऐसा है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी बात है, पोलर का पोलरी के बगैर किधर गुजारा, चंसी के चंस के बगैर गुजारा नहीं है।
0: हाँ जी, केसन जिसको रास आ गई, बल्कि रास क्या, हर किसी को रास आती है, जो भी ट्राई करता है जो भी लेता है तो उसको रास तो इस कंपनी में आना ही है, और फिर उसको वो रेगुलर यूज भी करता है। बहुत शुक्रिया, और कुछ कहेंगे आप?
1: बस तमाम सुनने वाले को सलाम, और आपको भी बहुत बहुत सलाम।
0: जी जी, आपको भी बहुत बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत कमाल की प्रोडक्ट केसन नेचुरल पाकिस्तान आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रही है।

जी जनाब, स्किन क्लियर फार्मूला नाइट क्रीम आप लोगों के लिए हम पेश करने जा रहे हैं। ये तो मैं आपको पिछले 3-4 दिन से बता रहा हूँ। आपको पता है कि ये जो मामलात चल रहे हैं लॉन्ग मार्च के, उसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से हम डिस्टर्ब हैं, क्योंकि जो अड्डे हैं, जो बुकिंग्स है, जो गाड़ियां हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से इस फार्मूलेशन को हम तक पहुंचने में अभी टाइम लग रहा है। तो उस वजह से आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह जैसे मामला सॉर्ट आउट होते हैं तो ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी क्रीम के साथ हम एक डे टाइम क्रीम भी लॉन्च कर रहे हैं। ये दोनों क्रीमें एक साथ हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर। एक स्किन क्लियर क्रीम है फार्मूला, जो कि सीरम से बनाया गया है, सीरम इन्फ्यूज्ड फार्मूला है। ठीक है जनाब, 4 किस्म के जो सीरम है, ट्रांजेमिक एसिड, एजलेक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड एंड रेटिनॉल को व्हाइटिंग क्रीम के अंदर हमने इन्फ्यूज किया है। ठीक है जनाब, और उसके बाद ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मुलेशन बनकर आप लोगों के पास आएगी। और ये कितने लोगों के लिए फायदा मंद होगी, ये दानों को बिल्कुल खत्म करेगी, दानों के निशानात को खत्म करेगी, छाइयों को खत्म करेगी, छाइयों की उनका कोई निशान बाकी नहीं रहेगा, दाग धब्बों को खत्म करेगी और रंग को गोरा गोरा, जैसे कि हम आपको कह रहे हैं ना कि गोरा गोरा आपका चेहरा बनाएगी, आपको हसीन बनाएगी ये क्रीम, जिसको हम कहते हैं स्किन क्लियर क्रीम। ठीक है जनाब, इसी के साथ डे टाइम क्रीम हम आपको दे रहे हैं। और आप जब तक हमारी इस बात को फॉलो करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी गई हुई छाइयां वापस नहीं आएंगी। बहुत सारी खवातीन इस वक्त सुन रही होंगी जो ये कहेंगे कि हमने फलां क्रीम ली, छाइयां तो खत्म हो गई लेकिन उसके कुछ अरसे बाद फिर वापस आ गए, तो उसमें कंपनी का कसूर नहीं है, कंपनी की क्रीम का कसूर नहीं है, बल्कि उसके अंदर आपका अपना आपका कसूर है कि आप नाइट टाइम क्रीम तो इस्तेमाल करते हैं छाइयों को खत्म करने के लिए, लेकिन दिन को अपनी स्किन को बचाने के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि सूरज और यूवी रेज एक दफा फिर से आपकी स्किन के ऊपर वही छाइयां नमूदार कर देती हैं। तो ये जो डे टाइम क्रीम हम आपको दे रहे हैं, ये सन ब्लॉक प्लस फेयरनेस क्रीम है, जिसका नाम है केसन लवली फेस। पहले हमारी लवली क्रीम थी, अगर आपको याद आती हो तो। ठीक है जनाब, बीच में हमने उसे ड्रॉप कर दिया था, उसकी फॉर्मुलेशन को मजीद इम्प्रूव किया है सन ब्लॉक की क्वालिटी ब्यूटीज के साथ। इस वक्त हम आप लोगों को ये फार्मूला प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्राइस में इतनी महंगी नहीं होगी, 200 से 150 के दरमियान है ये डे टाइम क्रीम। लेकिन जब आप स्किन क्लियर फार्मूला रात को इस्तेमाल करेंगी तो दिन के वक्त जरूरी है कि इस क्रीम को इस्तेमाल करें, इस क्रीम का फॉलो अप दे इसी क्रीम के साथ, ताकि आपका चेहरा जब क्लियर हो तो उसके बाद फिर से छाइयां, वाइयां, दाग धब्बे कुछ भी वापस ना आए। तो जनाब, इस उम्मीद के साथ एक बहुत बड़ी हमारी रिसर्च, बहुत बड़ी तहकीक, और इस तहकीक के नतीजे में हमने ये फार्मूला बनाया है, जो कि बहुत ही पोटेंट फार्मूला है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैजिकल फार्मूला है। और ये अपने तरीके से इसके अंदर जो 6 तरह के अज्जा हैं वो आपकी झुर्रियों को खत्म करने का बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, आपकी छाइयों को हटाने का काम, दाग धब्बों को हटाने का काम, और साथ साथ में गोरा गोरा हसीन चेहरा।

0: जी जनाब, केसन आपके बारे में जितना मेरे ख्याल में कि ये कंपनी सोचती है शायद किसी और के हिस्से में इतनी मोहब्बत आए कि जितनी केयर के साथ, और इस वक्त हम आप लोगों को के लिए जो न्यू फार्मुलेशंस लॉन्च कर रहे हैं वो अमेजिंग तरीके से आप लोगों को सेटिस्फाइड करेंगे। क्रीम का टेक्सचर बिल्कुल मक्खन की तरह होगा कि आपको अपने चेहरे पर लगाते हुए नर्म मुलायम चेहरा महसूस होगा और पूरे रात जो है आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल क्रीम रहकर अपना काम करेगी और आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपने बहुत अच्छे से सोचे हुए आपका ख्वाब, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहे थे। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे मोहतरम? अच्छा जी जनाब, खादिम फारूकी गिरसल से हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं मोहतरम, ठीक हैं आप?
1: ठीक ठाक हैं, सरियत से हैं।
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं 91 को सुन रहे हैं या पहाड़पुर को?
1: पहाड़पुर
0: को सुन रहे हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हसान कैसे हैं और आप कैसे हैं? अच्छा, आज आपकी तरफ भी सिग्नल वीक है, कट कट की आवाज आ रही है।
1: इलाके के चूहे भी आप
0: इलाके के चूहों को फेवरेट चीज मिल गई है जनाब, और आप लोगों को चीज मिल गई जिसके चूहे दीवाने हैं।
1: हमारी दुकान,
0: आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, तो फारूकी साहब जो है वो हम एक दफा फिर से कॉल करेंगे और चूहों का हाल अहवाल बताएंगे। जनाब चूहे, चूहों की कहानी जो है आज हमारे सामने आई है और ये नुकसान हमें हुआ है, पता है आपको, ये 2500 का नुकसान उन्होंने हमसे भरा है कि हम क्या करें भाई, चूहे खा गए। हमने कहा हमारा क्या कसूर है कि चूहे खा गए? उन्होंने कहा भाई जो भी होगा अब ये आपकी कंपनी पे करेगी, ये खाली पैक कंपनी के पास जमा कराएं। इतनी जबरदस्त चीज बनाने की क्या जरूरत थी कि जिसको चूहे भी नहीं।

0: जनाब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आपके मैसेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं, उनको भी मौका देंगे, देखते हैं कौन है।
1: वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: अली भाई, अली भाई हूँ।
0: अली अली अली भाई टांग से हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, मैं को लगता ही में जो तुसा कल सिर्प सारा गिन छोड़ा है पीती खड़े हुए कि नहीं। मत घिन की दावे सिर्प मैं दे आला
1: बिल्कुल सेट की गया इंशाल्लाह
0: बिल्कुल की रहा मसला है तो को पहले ये दसो।
1: बस मसला ये है कि बस देसी खाना में गना रूह नहीं देना
0: खावन के बाद रूह नहीं देना अच्छा यानी कि दिल द्वारा खराब खराब रांदा आई थे बोझ रांदा है हूं हल्का पन महसूस थी
1: बोझ होने दीवार में हाँ
0: बस आज तो बहुत तेज तेज हलन पे लगता है की बोतल खत्म की थी खड़े हुए हाजमा कंट्रोल दी
1: इनशाला
0: अच्छा बात भाई गिने दूजी अगर जरूरत थी तो बहुत ज्यादा ही नपी
1: हुआ
0: अच्छा महंगी तो नहीं बहु 150 रुपए थी ज्यादा कितने अच्छा पूरा 150 की दे रियायत नहीं की थी उन्होंने तो
1: नहीं नहीं ज्यादा नहीं
0: मुजीब रहमान को आखो आना भाई
1: रियायत करें
0: अच्छा बैसी बहुत रियायत करें ठीक है
1: बिल्कुल
0: बस ऐसा गिन की दे हाजमे को ठीक कर छोड़ा बात इन बस ताकत प्लस गिनाई में तो को पहलवान बढ़ा देवे यकीन करो
1: वो तो फिर
0: पहले तुरे गई मंजिया का इलाज करो ना उन्होंने दूध आवे तो बात उन्हें बस ताकत प्लस पीसो है जी
1: जी जी जी बिल्कुल सारे
0: दुआ
1: सलाम प्रोग्राम सुन
0: अच्छा चलो जी सारे
1: स्पेशल दुआ सलाम
0: अच्छा जी ठीक है
1: सारा एक प्रोग्राम
0: अच्छा प्रोग्राम करेंगे नेमत भाई
1: दुआ सलाम है
0: नेमत भाई आरजे नेमत
1: उनके पास स्पेशल दुआ
0: आरजे नेमत आदे पे तुसा
1: जी जी जी नेमतुल्ला रही
0: अच्छा आरजे नेमतुल्ला रही चलो जी जितने भी लिस्टनर सुन रहे हैं भी आपके आरजे भी मारे चलो ठीक है जी बहुत शुक्रिया जी आप रेडियो प्रोग्राम के आरजे हैं नेमतुल्ला रही साहब वो बीमार हैं तो उनके लिए जरूर दुआओं में याद रखिएगा उनको और बीमार आदमी के लिए दुआएं करनी चाहिए जनाब और सेहत बहुत बड़ी नेमत है और जब नेमत चली जाए तो फिर उसकी क्या कहते हैं फिर एहसास होता है कि भाई लोग बाज़ुकात उनके पास जब पैसे नहीं होते तंग दस्ती होती है तो वो कहते हैं किस चीज का शुक्र अदा करें और जब सेहत जाती है तो बंदा कहता है कि यार बस सेहत हो और कुछ ना हो। जी अंकल असद हमारे साथ टांग से हैं मौजूद हैं हमारे साथ कहते हैं रात के 3:42 या अल्लाह इस वक्त तो आप अपने हैं जनाब ये वाकई रात के इतने बजे उन्होंने मैसेज किया हुआ है अल्लाह ताला इनकी जो है जो मोहब्बत है हमारे साथ मेरे साथ इनकी जो मोहब्बत है अल्लाह ताला लोगों की बुरी नजर से बचाए और इनको इनका बदला अता फरमाए जो जिन मोहब्बत से इस मोहब्बत से ये मुझे नवाज रहे हैं कि रात के 3:42 पर या अल्लाह इस वक्त तो आप अपने बंदों की दुआएं सुनने और फैलाए पहले आसमान पे तशरीफ फरमा होते हैं और मेरे अल्लाह खलील आपको बंदों की खिदमत कर रहा है और आप उनकी हर प्रोडक्ट में ऐसी शिफा डालें कि जो जो भी इस्तेमाल करे वो शिफाए कामला मिले और इस खिदमत के बदले खलील को की हर जायज अरमान और जरूरत को पूरी करे। बहुत शुक्रिया आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। अंकल असद आप तहज्जुद के टाइम में इस वक्त आपने टाइम मेंशन करके जो है जो दुआ भेजी है मैं कर्जदार रहूंगा बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट हमारे साथ खलील भाई आपको सलाम प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहुत मजा आ रहा है मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम पप्पू पकवान सेंटर रंगपुर अड्डा से रोजीना आप ही भी आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अरसे बाद जो है वो आई है हमारे प्रोग्राम में तो उनको हम ढेर सारा वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का। एंड हमजा बलोच कुरई से हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जनाब कुरई से आप हमारे साथ हैं। आमिर अवान पाकिस्तानी

0: किसी भी शरीयत चार चार धर्म नशीला हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ रहिए।

0: कि इसको चराइते को आप अगर अल्लाह ना करे टाइफाइड का है, मलेरिया है, उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जुशांदा बना के पी सकते हैं, वो पुराने बुखारों को जिस्म से बाहर निकालता है, टाइफाइड को ठीक करता है, मलेरिया को ठीक करता है। दूसरा ये है कि हड्डियों में जो दर्द वगैरह होती है इसकी बुखार की वजह से, वो भी खत्म हो जाती है।
1: जी जी।
0: बाकी इसके साथ मुजीद जो है वो फिर अगर चेहरे पे दाने हैं, फोड़े फुंसियां निकल आते हैं, जैसे बरसात का मौसम गुजरा है
1: जी,
0: तो उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी।
0: ये आपके खून को साफ करता है
1: जी,
0: आपकी जिल्द को सही करता है, आपका रंग निखारता है। इसमें और भी बहुत सी क्वालिटी है
1: जी,
0: कि ये आपके जिगर
1: जी,
0: या आपकी तिली के कोई मर्ज है, जैसे तिली बढ़ रही है
1: जी जी,
0: ये उसमें भी काम करता है, उसके वर्म को, उसकी सोजन को उतारता है, उसकी गर्मी को दूर करता है
1: जी।
0: फिर ये यरकान में बहुत काम करता है, जिसे इब्तदाई स्टेज पे जैसे पीलिया हम लोग
1: पील,
0: उसमें भी ये बहुत काम करता है। उसके अलावा ये आपके हाजमे की कमजोरी दूर कर देता है
1: जी।
0: इसके साथ साथ जिन लोगों को भूख नहीं लगती,
1: भूख नहीं लगती,
0: उनके लिए भी कारामद है, उनको भी फायदा देता है। उसके बाद ये पेट में गैस वगैरह जब बनती है, ये गैस को भी खत्म करता है, ठीक है ना
1: जी।
0: फिर कुछ लोगों के पेट में कीड़े होते हैं, स्पेशली बच्चों में,
1: बच्चों में,
0: तो उनके पेट के कीड़े भी ये खत्म करता है, ये भी इसमें है क्वालिटी। फिर इसके साथ साथ ये शुगर के लिए तो बहुत ही बेहतर है ना,
1: शुगर
0: हमारे जिस्म से शुगर की मिकदार को कम करता है
1: जी, जी।
0: उसको एक लेवल पे रखता है ताकि उनको बाहर से मुजीद किसी चीज की जरूरत ना हो, जैसे इंसुलिन है या शुगर की टेबलेट्स वगैरह उसकी जरूरत ना रहे, शुगर को भी कंट्रोल रखता है
1: जी।
0: फिर उसके साथ साथ ये आपके जो है उसमें कीड़ों को ना सिर्फ मारता है पेट के, बल्कि उन्हें बाहर खारिज भी करता है। और इसके सिर्फ इसका इस्तेमाल है
1: जी,
0: क्योंकि इसका जायका बहुत कड़वा होता है, इसे या आप सफूफ की शक्ल में
1: जी,
0: किसी
1: जी।
0: कैप्सूल में खाली में भर के, या फिर एक हाफ टी स्पून छोटा उसकी मिकदार आप पानी से ले सकते हैं
1: जी।
0: वक्ती तौर पे आपका मुंह कड़वा होता है, लेकिन उसके साथ ही वो कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। या फिर आप इसे है कि आप इसे रात को पानी में भिगो के रखें और सुबह उस पानी को छान के
1: जी,
0: वो पानी आप इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ये डंडियां हैं, जब हम इसे बारीक करते हैं तो फिर भी इसमें बारीक बारीक से रह जाते हैं जो मैदे में जाके चुभते हैं या तकलीफ देते हैं, तो आप इसे छान के रख सकते हैं
1: जी।
0: और उसकी भी एक मिकदार है, यानी आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 ग्राम यानी एक चाय का छोटा चमचा या उससे कुछ ज्यादा
1: जी,
0: वो आप पानी के गिलास में भिगो के रखेंगे रात को, तो सुबह इसको छान के पियेंगे
1: जी जी।
0: और सुबह अगर रखते हैं तो फिर आप इसे शाम को छान के पियेंगे, उससे यह है कि आपके जिस्म से जो है मुख्तलिफ अमराज
1: जी जी जी
0: वो गायब हो जाते हैं, आपके जिस्म के एक किस्म का ये कह रहे हैं कि वो फिल्टर होता है
1: जी,
0: और खून भी, और दूसरा ये है कि आपकी बॉडी जो है वो रिफ्रेश होती है, उसमें काफी हद तक तब्दीली आ जाती है
1: जी।
0: हाँ ये जरूर है इसमें कि ऐसी लेडीज जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, आमला हैं
1: जी,
0: उनके लिए ये मुनासिब नहीं है
1: जी,
0: उनको सिर्फ थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें नहीं पता कि उनका वक्त कौन सा है, शुरू है आखिर है, तो उसमें एहतियात रखी जाती है
1: जी।
0: और या जो बच्चे छोटे हैं जिनकी माएं उन्हें दूध पिला रही हैं, उनको थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है, बाकी इसके अलावा हर एक इसको इस्तेमाल कर सकता है
1: जी।
0: और दूसरा ये कि अक्सर हमारे जिस्म में जब अकड़न पैदा होती है, खिंचाव सा पड़ता है, उसमें भी ये कारामद है, उस अकड़न को या उस खिंचाव को खत्म करता है
1: जी।
0: और दूसरा ये है कि इसमें आप इसको अकेले उस तरह इस सूरत में नहीं लेंगे
1: जी,
0: या तो आप इसको मामूली खालिस अगर घर में शहद है
1: जी,
0: इस पाउडर को थोड़े से को आप शहद में मिक्स कर
1: जी, जी, जी,
0: और एक मजून सा बना लें और वो आप चाटें
1: जी, जी,
0: या अगर शहद नहीं है
1: जी,
0: तो फिर घर में गुड़ पड़ा है,
1: गुड़
0: तो आप थोड़े गुड़ में इसको शामिल करेंगे
1: जी, जी,
0: और वो जो एक पाउडर बन जाएगा गुड़ को और मिला के इसको उसको आप चूसेंगे और उसके बाद थोड़ा पानी पी लें, अगर पीते हैं नहीं तो उसको वैसे गुड़ के साथ खा लें। तो ये भी आपके जिस्म से जो अकड़न है उसको खत्म करेगा

0: بلرو حکیم صاحب ما سره موجود ده. حکیم صاحب نو چت ته پوس پوښتنه کوم.
1: شکر نه ته نن نمبر مې ملا سبا سره ما ملا ول ورکی ملا ول نو بس لا وو
0: دا چکم دے نری اڈو کیا ریڈ کیا ڈیا ہاں
1: جی جا چھوٹی چیل کا مسئلہ ہے تھوڑا
0: کیا مسئلہ ہے اس کا
1: درد کرتا ہے
0: درد کرتا ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کام روزگار کیا کرتے ہیں
1: میری عمر ہے تقریباً 52-53 سال ہے
0: 52-53 سال آپ کی عمر ہے اور آپ نے کوئی وزن تو نہیں اٹھایا ان قریب
1: نہیں نہیں وزن تو میں کافی ٹائم سے نہیں اٹھا رہا
0: جی
1: میں نے مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تھا جو وزن مت اٹھاؤ
0: تو یہ ریڑھ کی ہڈی آپ کا ہر وقت درد کرتا ہے یا کبھی کبھار
1: نہیں یہ جو ہے نا وہ میں نے سفر کیا تھا نا
0: جی جی
1: جی اس لیے درد کرتا ہے تو ابھی جو ہے نا حکیم صاحب سے مشورہ کرتے ہیں کہ ابھی کیا کریں
0: بس ٹھیک ہے آپ ریڈیو سنتے رہیں آپ کو حکیم صاحب جواب دیتے ہیں یونس صاحب ٹھیک ہے
1: زندہ باد زندہ باد زندہ باد
0: جی جی بڑی مہربانی یونس جکم بالکل مشتقال کڑو ماں کو اول نو پسند ہے یہ تو ہمارے وہ جو جان پہچان والے تھے پہلے مجھے پتہ نہیں چلا انہوں نے کال کی تھی اس کا سوال بھی میں نے نوٹ کیا ہے اور سلیم کٹی خیل کا بھی کیا ہے تیسرا بھی شامل کر دیتے ہیں تو پھر تینوں کو اکٹھے جواب دیں گے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی خورے پروگرام چیر کلا در توایو
2: خبر السلام علیکم حکیم صاحب
3: وعلیکم السلام
2: میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو میرے پتے میں پتری ہے
0: پتے میں
2: دوسری بات یہ ہے کہ میرا گلا زیادہ خراب رہتا ہے
0: گلا خراب
2: میرا چھوٹا بیٹا ہے تقریباً 2-7 ماہ کا
0: جی
2: اس کا سینہ ہر وقت خراب رہتا ہے تین سمجھ نہیں رہا آپ کی کیا وجہ ہے کس وجہ سے لگی ہے سینے کی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھے انہوں نے چیک اپ کیا انہوں نے کہا کہ سینہ خراب نہیں ہے اس سے کوئی لگی ہے
0: جی جی بس
2: یہ اس کے لیے آپ کو بتا دیں
0: بس ٹھیک جی سسٹر آپ پروگرام سنتے رہے آپ کے جو آپ نے پوچھا ہے ہم نے نوٹ کر لیا حکیم صاحب آپ کو جواب دیں گے جی اللہ حافظ جی حکیم صاحب سب سے پہلے سلیم کٹی خیل نے ہم سے پوچھا تھا کہ چونکہ آج کل یہ موسم چینج ہو رہا ہے گرمیاں ختم ہو گئی ہے دن کو گرمی ہوتی ہے
3: رات ٹھنڈی
0: ٹھنڈک ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم چونکہ گاؤں میں رہتے ہیں دیہاتوں میں رہتے ہیں ہم رات کو باہر سین میں سوتے ہیں جو اکثر صبح کے وقت سردی زیادہ پڑتی ہے اور تو یہ سونا بہتر ہے اب اس موسم میں باہر یا ابھی اس کا کوئی
3: نہیں ابھی سونا بہتر نہیں اس کی وجہ ہے کہ رات کو جسے ہم کہتے ہیں نا اوس گرنا
0: اوس گرنا
3: یا شبنم
0: جی جی
3: تو یہ چیز جو ہے یہ ابھی ان کے جسم میں یعنی اگر اترتی ہے تو وہ جسم اس میں آپ کی ہڈیوں میں درد پیدا کر سکتی ہے آپ کے جسم میں اکڑن پیدا کر سکتی ہے
0: جی جی
3: کوشش کریں کہ اب آپ رات کو اندر سونا شروع کریں
0: شروع
3: باہر کھلی جگہ میں نہ سوئے یعنی کھلے آسمان کے نیچے
0: جی جی
3: ہاں اگر کوئی شیڈ وغیرہ ہے
0: جی
3: اس شیڈ کے نیچے تو آپ سو سکتے ہیں
0: جی جی
3: لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں ساتھ چادر رکھتا ہوں
0: جی جی
3: ساتھ کچھ لیکن پھر بھی سونا ٹھیک نہیں ہے
0: جی جی
3: آپ اندر کمرے میں سوئیں یا کسی شیڈ کے نیچے سوئیں جیسے برانڈا وغیرہ ہے تو اس وہ آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے میرے خیال سے ایج بھی تقریباً 50+
0: وہ دوسرا
3: اچھا بہرحال یہ ہے کہ اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ کمرے میں سوئیں باہر اب نہ سوئیں
0: جی سلیم کٹی خیل صاحب تاسو بد حکیم صاحب جواب اور دلی نو بالکل حکیم صاحب فرمائی چل رہے موسم چھ ابار چمل سے دل وہ ٹک نہ دی چونکہ موسم بدلے جی او دا بٹک نہ بھی نو بالکل حکیم صاحب اس کے بعد ہم ایک دوسرے بھائی یونس بھائی نے جن کی عمر آپ
3: 52-53
0: انہوں نے کہا کہ میری ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس میں اکثر درد ہوتا ہے میں نے کوئی سفر کیا تھا
3: جی
0: تو اس کے بعد سے مجھے یہ شکایت ہے یہ جو ریڑھ کی ہڈی
3: بالکل نیچے کے سائے
0: ہاں اس میں میرا درد ہوتا ہے 52-53 سال اس نے عمر بتائیے جی
3: دیکھیں بعض اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں بعض دفعہ اعصابی کمزوری سے بھی ہو سکتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سفر کرنے میں جھٹکے وغیرہ لگنا اور اس میں ہمارے جو یہ اس کے ریڑھ کی ہڈی کے منکے ہیں یا اسے کہہ لیں वो डिस्क में थोड़ा सा बाजू का फर्क आ जाता है
0: जी,
3: उसकी वजह से भी दर्द होती है, और बाद दफा वो गोश्त में भी दर्द होती है जिसे हम समझते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रही है। बेहतर तो ये है कि अगर ये कोई वक्त निकाल के
0: जी
3: तो जरा मिल लें,
0: मिल
3: क्योंकि जब ये दवाखाने पे आएंगे तो इनकी नबज के साथ साथ इनकी जहाँ पे दर्द है
0: जी
3: वो जगह का भी मुआयना हो जाता है, उसे पता चलता है कि नीचे किस जो है जाके मोरे पे ये दर्द महसूस करते हैं। तो उसके लिए है कि अगर ये थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि मैं रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होता हूँ, तो ये वक्त निकाल के अगर मिलते हैं तो वो इनके लिए भी बेहतर रहेगा और मुझे भी मरज की तशखीस करने में आसानी होगी
0: जी। बड़ी मेहरबानी यूनस भाई, आपने अकीम साहब का जवाब सुना तो इन्होंने कहा है कि आपको अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग पे आना पड़ेगा और जो मुआयना चेकअप इसके लिए जरूरी है, तो अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट निस्ट्रिपक पॉइंट टांग पे तशरीफ लाएं, आपका चेकअप मुआयना होगा, इसके बाद आपके इलाज का कोई तशखीस होगा। जी हकीम साहब, इसके बाद एक सिस्टर ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था पत्रिका कहा था और वो फिर कहा है कि मेरा गला अक्सर खराब रहता है, दूसरा सवाल ये किया था, तीसरा सवाल ये किया था कि मेरे 2 साल का एक बेटा है जिसका सीना अक्सर खराब रहता है, तो इन्होंने ये 3 सवाल पूछे हैं, तो आप क्या
3: देखें, एक तो पित्ते की पथरी, उसके लिए इनकी रिपोर्ट जो है वो भी आना जरूरी है,
0: रिपोर्ट
3: अगर तो पित्ता फुल भरा हुआ है
0: जी जी जी
3: तो फिर तो माँ सिवाय उसका सर्जरी हल है
0: जी,
3: और अगर पित्ते की पथरी फुल नहीं है यानी वो वहाँ रिपोर्ट बता रही है
0: जी
3: तो फिर उसका इलाज हो सकता है, पित्ते की पथरी यानी पित्ता निकलवाना नहीं पड़ेगा
0: जी,
3: और सिर्फ पत्थर ही जो है वो पिघल के, दरअसल वो जमा हुआ पानी होता है
0: जी जी
3: जिसको हम पत्थर का नाम दे देते हैं
0: जी,
3: तो वो पिघल के जिस तरह बर्फ के क्यूब पिघलते हैं नरम पानी बन जाता है, इसी तरह ये हमारे जिस्म से खारिज हो जाए तो पित्ता बच जाता है, लेकिन एलोपैथिक में यह है कि वो फौरन पित्ता ही रिमूव कर
0: देते।
3: अब दूसरा ये है कि इनका गला खराब रहता है, उसकी कुछ वजूहात जो है वो पित्ते की पथरी से भी हैं।
0: अच्छा,
3: और तीसरा ये है कि बाज दफा होता है कि कुछ खाने का या कुछ मैदे की तेजाबियत, उसकी वजह से भी गला खराब रह सकता है। अब ये तो पेशेंट जब आता है और उससे तफसीलन बातचीत होती है
0: जी,
3: तो वो क्लियर हो जाता है
0: जी।
3: तीसरा बच्चा है उसकी चेस्ट इन्फेक्शन है, डॉक्टरों ने भी उसे कहा है, अब देखना यह है कि आया जब ये बच्चा दूध पी रहा था तो उस टाइम इसकी वालदा को कोई इस किस्म का कोई मसला तो नहीं था, जैसे कोई गला खराब या खांसी या इन्फेक्शन
0: जी,
3: क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो जो माँ को तकलीफ होती है वो बच्चे में भी कन्वर्ट हो जाती है दूध के जरिए। अगर बच्चे को दूध पीने से ये शुरू है
0: जी,
3: तो फिर जाहिर बात है कि उसको ये तकलीफ है, एलर्जी है और उसका इलाज तो है
0: जी,
3: लेकिन क्योंकि बच्चा छोटा है और वो अब कैप्सूल गोलियां तो खा नहीं सकता, तो उसके लिए यही है कि आप सिरप के तौर पे
0: जी
3: आप उसको दवाई दे सकते हो। बाकी यहाँ बाज दफा टोटके काम नहीं करते
0: जी,
3: क्योंकि बच्चा है और बहुत तवज्जो की तलब है, 2 साल उम्र है उसकी सारी, तो बहन मेरी को तो चाहिए कि अगर वो दवाखाने पे आते हैं
0: जी
3: तो फिर कोशिश करें कि बेटे को साथ ले आए
0: जी,
3: ताकि बच्चे को देख के और उसके मुताबिक फिर मैं बता सकूं कि अगर कोई नुस्खा हुआ तो जरूर बता दूंगा कि आप इसको घर में ये इस्तेमाल करा सकते हैं
0: जी, जी। बड़ी मेहरबानी हकीम साहब। एक मैसेज आया हकीम साहब, इन्होंने नाम नहीं लिखा और जो सवाल किया वो भी बहुत बड़ा किया है, लिखा है कि दिल के बंद वालों के लिए तसल्ली बख्श दवाई बताओ, ये लिखा है सिर्फ दिल के बंद वालों के लिए,
3: अच्छा वाल बंद हो
0: जाते हैं, तसल्ली बख्श दवाई बताओ, तो इन्होंने ये पूछा है।
3: देखिए इसके लिए एक नहीं है
0: जी,
3: बहुत सी ऐसी चीजें हैं
0: जी
3: जो काम करती हैं, जैसे अजवा खजूर की गिटक भी काम कर देती है, उसको पीस के और साथ शहद के साथ भी इस्तेमाल कराया जा सकता
0: जी,
3: है
0: जी, जी।
3: लेकिन प्रॉपरली ये है, बेहतर तो ये है कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट से रابطہ करें
0: जी,
3: दिल के डॉक्टर से आप मिलें, उससे कंसल्ट करें, वो आपकी बेहतर सूरत हाल दे के आपको मशवरा दे सकते हैं
0: जी,
3: क्योंकि देसी इलाज दिल के मामले में उतना इफेक्टिव नहीं है, इसमें किसी भी टाइम एमरजेंसी हो सकती
0: जी
3: है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप पहले दिल के डॉक्टर से मिल लें, अगर हार्ट स्पेशलिस्ट आपको इसके मुतालिक बेहतर मशवरा दे सकेगा। आप टोटके या नुस्खों के उसमें ना रहें
0: जी। बड़ी जबरदस्त आपने आज उसको समझाया। एक अकीम से एक और मैसेज आया, मोहम्मद दाऊद भाई, अकीम साहब से ये पूछे कि मुझे हर साल सितंबर में टाइफाइड हो जाता है, क्या इसका हर्बल में इलाज है?
3: बिल्कुल, इसका इलाज है मियादी बुखार का
0: जी,
3: और हर्बल में इसका इलाज है, और इंशाल्लाह फिर आपको किसी सीजन में बुखार वापस पलट के नहीं आता
0: जी।
3: सिर्फ ये होता है कि थोड़ी एहतियात होती है और प्रॉपर तरीके से इसका थोड़ी देर इलाज चलता है देसी में
0: जी।
3: तो वो जरा थोड़ा सा मामला जो है, यानी महीना डेढ़ महीना, वो आपको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से इलाज करना पड़ता है
0: जी।
3: लेकिन बुखार आपका नहीं आता, और आपका वजूद आपको बताता भी है कि मेरे वजूद में अब वो सुस्ती, वो काहली या वो कमजोरी नहीं है
0: जी।
3: मैं अपने में एक थोड़ी ताकत महसूस कर रहा हूँ, तो वो एक साइन होते हैं या एक निशान, एक इंडिकेट कर रहा होता है कि हाँ मेरा मर्ज जो है, मेरी हड्डियों से बुखार जो है वो निकल। तो इसका इलाज है, बिल्कुल है
0: जी। एक और मैसेज आया अकीम से, वो कहते हैं हाय मैं अली हूँ, अली खेल इतने गाँव है, और मेरे चेहरे पर दाने हैं, उसका कुछ इलाज बताओ। और इसके बाद उसने कहा है बहुत दर्द होता है दानों की वजह से।
3: जी बिल्कुल होगा, जाहिर है वो आपकी जिल्द पे निकले हैं और उसमें मुआद भी होता है
0: जी।
3: तो जब मुआद होगा और आप उसको निकालेंगे, मुआद को हाथ से दबाएं या किसी भी तरीके से कोई आप कोई ऐसी लोशन या कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसमें जलन तो होगी। तो दूसरा यह है कि सबसे पहले आप अपने खाने का शेड्यूल देखें
0: जी,
3: आपकी खुराक क्या है। सबसे पहले तो आप अपने खुराक को ठीक करें
0: जी,
3: और उसके साथ साथ फिर अपने जिस्म, अपने चेहरे को भी साफ रखने की कोशिश करें। बाकी जहां तक है ये आपके मैदे की तजाबियत या मैदे की हिद्दत या जिस्म में गर्मी की कई वजूहात आ जाती हैं, तो वो फिर चेहरे पे जाहिर होती हैं। हाँ, जहां तक आप इसके इलाज की बात करें तो देसी अद्वियात में इसका इलाज प्रॉपर मौजूद है। अभी चराइते पे इसी पे बात हो रही थी कि ये हमारी स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशली स्किन को एक नई लुक देने के लिए, या दूसरा कि आपके खून में हिद्दत है, फासद मादे हैं जो आपके चेहरे पे दानों की शक्ल में, पिंपल्स की शक्ल में निकलते हैं, तो उसके लिए ये बेहतर है
0: जी।
3: और कोशिश करें कि अगर आप दवाखाने पे आएं
0: जी
3: और बिलमुशाफा मिल लें, तो उसमें ज्यादा बेहतरी है कि आपके मिजाज का भी पता चले
0: जी,
3: और आपके बॉडीज का भी पता चले
0: जी,
3: और इसका एक बेहतर सोल्यूशन भी निकले जो आपको फायदा दे और आपका चेहरा इन दानों से साफ हो जाए।
0: माशाल्लाह जी। अकीम साहब एक और मैसेज आया है, कहता है अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, आपको और अकीम साहब को सलाम। बीच में कॉल आ गई, मैं कहता हूँ कॉल उठा लेते हैं, वो मैसेज जो चुप गए, वही सॉरी जो कॉल आई थी वो ड्रॉप हो गया। तो कहते हैं उमर भाई आपको और अकीम साहब को सलाम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: भाई, अकीम साहब से पूछो कि जब टीचर क्लास में आती है और पीरियड देती है तो फिर कॉल आ जाती है कॉल के लिए नहीं छोड़, मैसेज पढ़ने के लिए नहीं छोड़ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैर दताजो शोयो।
3: वालेकुम
0: सलाम, ता अकीम साहब ता सलाम रो से दे चो अकीम साहब ना ता शो खबर है को मारूज खबर है कवे टांक ना अकीम साहब रो सरा नास्ता चे पुछता ना कवे सर चे दे दर्द दी और चे शादे खोजी जी आता सो उमर चोरा था नौ दस साल दे उमर दा ठीक था बस तो किम से उर्दू जवाब दर कई पपा जी बस ते किम से जवाब हर बार दर कई जवाब सही था
4: बस सही था।
0: किम से ये छोटी सी वो थी 9-10 साल की
3: जी जी,
0: तो उसने कहा मुझे हर्निया हाँ उसका वो दर्द की तकलीफ है उसको, तो उसके बारे में पूछा है जो दर्द करता है उसका जैसे मुझे तकलीफ है।
3: उसका बेहतरीन हाल ये है, वो भी छोटी बेटी है, उम्र छोटी है उसकी, तो इनके वालिद को चाहिए कि इसे फौरी तौर पे
0: जी
3: अस्पताल में
0: जी
3: डॉक्टर से कंसल्ट करें
0: जी,
3: और इसका सिर्फ मास सेवाए सर्जरी इसका इलाज है, ऑपरेशन होगा, छोटा सा होगा,
0: छोटा सा,
3: और उसमें वो उस चीज को निकाल देंगे, क्योंकि हर्निया का इलाज जो है ये कारगर नहीं होता
0: जी, जी।
3: ये अपना साइज इसका मुस्तकिल जो है वो बढ़ता रहेगा और ये तकलीफ देगा
0: जी,
3: तो इसलिए बेहतर है कि आप मजीद टाइम जाया ना करें, अभी बच्ची छोटी है
0: जी।
3: और इसके लिए फिर आगे जाके मुश्किल पेश आएगी
0: जी, जी।
3: तो कोशिश करें कि आप इसे हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसकी जो है ऑपरेट के जरिए ये ठीक हो जाएगा
0: जी। वो मैसेज बड़ी मेहरबानी हकीम सर ने आपने तफसील से जवाब दिए, तो मैसेज हमने छोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम और भाई आपको और हकीम साहब को सलाम। भाई हकीम साहब से पूछो कि जब टीचर क्लास में आती है और पीरियड देती है, पीरियड वो जो
3: पीरियड
0: तो मेरे सर में शायद शदीद किस्म का दर्द शुरू होता है,
3: ठीक है,
0: ये क्या मसला है आपकी बहन? तो जैसे टीचर वो क्लास में आती है तो इनके सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है,
3: इसका मतलब है कि शायद ये पीरियड लेना नहीं चाहते
0: उसके लिए,
3: ठीक है कि यार मैं इस जो है अब ये नहीं पता कि ये कोई मखसूस टीचर है
0: जी,
3: या हर टीचर के साथ ऐसा है। होता है ना कि लेक्चर होते हैं, मुस्लिम प्रोफेसर या मुस्लिम टीचर आते हैं, मैथमेटिक्स का अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, तो अब ये नहीं पता कि ये
0: कौन से सब्जेक्ट से
3: नहीं कि सब टीचर के साथ ऐसा होता है या कोई मखसूस टीचर है
0: जी, जी।
3: तो पहले ये क्लियर कर दे, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता।
0: उसको शुक्र है उसको कोई ऐसा जो सेहत का कोई मसला नहीं है।
3: हाँ आप ये करें कि अपने जहन को थोड़ा सा फ्रेश रखें।
0: मेरे ख्याल में इन्होंने आखिर में ये मैसेज किया है, हमारे जो वो गपशप लग रही है उसको थोड़ा उसने उसमें तब्दील।
3: चले बहुत मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मूड चेंज कर दिया
0: उन्होंने,
3: और एक संजीदा ये टॉपिक है, संजीदा माहौल में बात होती है क्योंकि ये सेहत से रिलेटेड है, तो अब इसमें हल्का फुल्का अगर उन्होंने मजाक का तर्ज तड़का लगा दिया
0: जी जी जी,
3: तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी, लेकिन अपनी तालीम पे फोकस करें
0: और साथ में दर्द का वो ना बने,
3: वो छोड़ दें, वो ठीक हो जाएगा
0: जी। हकीम साहब आखिर में जाते जाते क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी तकरीबन खत्म हो चुका है, तो आपने जो इस वक्त हमारे लिसनर्स आपकी आवाज सुन रहे हैं उनको क्या ये एक कोई ऐसा मुफीद कोई मशवरा या कोई मैसेज देना चाहेंगे तो आप दे दें।
3: देखें एक ही मैसेज होता है
0: जी,
3: और कि आप अपने आप को खुश रखो
0: जी,
3: और कोशिश करो कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश करो
0: जी,
3: और क्योंकि नफरत सारे करना शुरू कर देते हैं, मोहब्बत कोई कोई है, तो आप मोहब्बतों की तकसीम करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं
0: जी।
3: तो अब सिर्फ अपनी सेहत का उस पर फोकस करें, ख्याल करें
0: जी,
3: उसको इग्नोर ना करें बस।
0: बड़ी मेहरबानी हकीम साहब,
3: मेहरबानी, बहुत शुक्रिया
0: जी,
3: आपका
0: जी, बड़ी मेहरबानी हकीम साहब आप आए और हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की। ग्रहण और धुन को बिल्कुल ताजो खबर या तर या रुदे दे सैयद मशकूर अहमद शाह साहब कम चे दवाखाना दा शिफा दवाखाने पर नाम दवाखाना कई शवाल मार्केट और नीस्ट रेपक पॉइंट टांग चे बिल्कुल अलता दे हकीम साहब मौजूद भी रोजाना सहार 8 बजे नवाखला माजीगर 4 बजे पूरे नो बिल्कुल तासो चिचक के समूह दे सियत पाकला च चेकअप मुआयने इलाज दे पर रातक वाड़ नो तासो रातक कवल है सोल शिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग तो हकीम सेब नखपल इलाज तला सकोल है सो हकीम सेब साहबा हम पखपल दवाखाने चे सहार 8 बजे नवाखला माजीगर 4 बजे पर मौजूदी नो बिल्कुल तासो रातक कवल है सो और दे नोर मालूम दे पारा तासो दे प्रोग्राम नबाद हम हकीम सेब चिकम दे अल शिफा दवाखाने हेल्पलाइन नंबर द चिकम हकीम सेब सरा पखपल मौजूदी अगे बन तासो बिल्कुल हकीम सेब तक कॉल कवल है सो नंबर कचा नहीं नोट नो जान सरा नोट को इनशाला नंबर द 0315-23404 इंशाल्लाह का जिंदगी व सबाब अब आता पदे प्रोग्राम चेमुजा तासु मुलाकात की तरगे वक्त पर माता यानी अर्जुन मरदाऊ तो रखो इजाजत फी अमानिल्ला रेडियो अमन जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदा।

0: जिंदगी में सुकून सेहत से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, भूख की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
1: रेडियो अमन।

आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा अनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा अनियन शैम्पू मंगवाएं। एश्मा अनियन शैम्पू सेहतमंद और

जी राजी स्टाफ सो मैसेज पर रिको मा पसी पर 342 311 22 92 गता सो मा तो मैसेज केवल गवाड़ी देश मा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम के मैसेज शामिल होल गवाड़ी पसी पर 342 311 22 बहन में व्हाट्सएप पे हम देता सो मा तो मैसेज केवल गवाड़ी के कॉल केवल गवाड़ी से पर 315 94 72 30 दा दवाना नंबर दे इश्मा हरियो प्रोडक्ट पर लिख ली दी सो रावा मा तो कॉल रामलाव भाई साहिदो